जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं बल्कि हर पल को खुलकर जीने का नाम है। छोटी छोटी खुशियां, मुस्कुराना, अपनों के साथ हंसना और हर दिन को एक नए उत्सव की तरह अपनाना, यही तो बेहद खूबसूरत जीवन की पहचान है। क्योंकि जो इंसान मस्ती, प्यार और मुस्कान के साथ जीना जानता है और दूसरों को खुश रखना जानता है, वही तो जिंदगी का असली आनंद लेता है।

और देखिए धीरे धीरे भोर सुहाने प्रोग्राम के अंत पर हम आ चुके हैं और चलते चलते हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत अर्जी के साथ, गीत के साथ। आपकी और हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। सुरभि को दीजिए इजाज़त और आप सुनिए ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया

0: ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मोज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमरीका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने होर्मोज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की युदाई ओकिमोतू को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीन ताइपी के सूली यांग से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसन से हार गई। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: बारिश की बूंद में
3: उद्देश्यंतो ई रोज़।

Good morning, beautiful people. You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow adds color to your life. Aur shuru ho chuka hai aapka favorite segment. Namaste, hello, adab. Aur kaise hain aap? Ji haan, kaise hain aap? I am your host aur dost, RJ Jagriti. So tell me, how's your Sunday going? संडे की सुबह है और अगर आज थोड़ा लीजी फील हो रहा है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आखिर संडे बना ही इसीलिए है. थोड़ा देर तक सोना, थोड़ा आराम करना, अपनी फेवरेट चाय या कॉफ़ी को चुस्की लेकर पीना और सबसे ज़रूरी खुद का ख्याल रखना, खुद को थोड़ा वक्त देना. और अगर उस चाय की पहली चुस्की के साथ आपने FM रेनबो ट्यूनिंग कर लिया है, देन ट्रस्ट मी, योर संडे इज़ ऑलरेडी ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट. वेदर का तो कोई भरोसा नहीं, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी धूप, कहीं छाया, और यही है ईश्वर की माया. बट एक चीज़ गारंटीड है, अगले चार घंटे इंटरटेनमेंट और जी नहीं, ये तीन का तड़का है, ये ट्राइलिंगुअल शो है और यहाँ रहेगा ढेर सारी बातें, म्यूज़िक और इंटरटेनमेंट. मैं हूँ, ये स्टूडियो क्लॉक है और सबसे ख़ास बात आप हैं. नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट, धमाकेदार बातें, ज़बरदस्त गाने और ढेर सारी मस्ती के साथ. तो डियर लिसनर्स, कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि रेनबो एक्सप्रेस अब चलने वाली है अपने म्यूजिकल सफ़र की ओर. टिक इट अवे.

वेलकम बैक लिसनर्स। सो स्टूडियो क्लॉक में टाइम है 10:25 और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपने फेवरेट स्टेशन पे, दिल का स्टेशन कहते हैं इसे, और ये है आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9। और टैगलाइन तो याद ही है ना आपको, रेनबो एड्स कलर टू योर लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही रंग आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार लेकर आते हैं। आज है 28 जून 2026, एक बेहतरीन संडे। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे स्पेशल डे है आज और एक हिस्टोरिकल डे भी है, उसके बारे में भी बातें करेंगे, गानों के साथ बातें करेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे, सब एक साथ नहीं बताऊंगी। गाना सुनते हैं उसके बाद, टेक इट अवे।

वेलकम बैक लिसनर्स। तो कैसा लगा ये गाना, है ना? कितनी सारी गहरी बातें हम आज करेंगे, और लेट्स डाइव इन टू वट मेक्स जून 28 एब्सोल्यूटली फैसिनेटिंग ऑन ग्लोबल स्केल। आज बहुत ही एक यूनिक ऑब्जर्वेशन है जिनके बारे में हम आमतौर पर नहीं सोचते हैं, पर उनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। टुडे इज़ लॉजिस्टिक डे, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक डे। आप सोच रहे होंगे, जागृति, लॉजिस्टिक का हमसे क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। आपको पता है, जो बाबा आपको सुबह ला के दूध देते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग का पार्सल आप एक वन डे डिलीवरी में मंगाते हो, और जो ग्लोबल आइटम्स आप तक पहुंचते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, वो सब इस मैसिव इनविजिबल सप्लाई चैन का हिस्सा है। अक्रॉस द वर्ल्ड, लॉजिस्टिक सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इकॉनमी। स्पेशली 2026 में ऑटोमेटेड ड्रोन्स और AI ड्रिवन डिलीवरी नेटवर्क्स ने लॉजिस्टिक को बिल्कुल बदल दिया है। और दिस डे ऑनर्स दोज मिलियंस ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, कार्गो पायलट्स, वेयर हाउस मैनेजर्स एंड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, जो दिन रात मेहनत करके बिना रुके सप्लाई लाइन को चलाते रहते हैं। विदाउट देम द वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड वुड लिटरली ग्रिन इन टू हेयर। सो सोच रहे हो आप, एक छोटी छोटी चीज़ें जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, सोचते हो 10 मिनट में आ जाएगा, ये सब उस सप्लाई चैन का इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो यस, आज है वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक डे, और आप थोड़ा सा काइंड रहें। जब आपको कोई पार्सल मिलता है, आप ऐसे कुछ स्टोरीज होती हैं जहाँ हम सोचते हैं हमारे गेट तक चीज़ें आ जाएँ, बट अगर पॉसिबल है तो गेट तक जाके ही ले लें, और अपार्टमेंट के गेट पे जाके ले लें, और या बी काइंड टू एवरी वन, क्योंकि काइंडनेस के लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ता, इट्स फ्री। यस, एंड ऐसे ही बहुत सारी ज्ञान की बातें करेंगे। और अभी तो शुरू हुआ है ये सेगमेंट, आपका फेवरेट। नमस्ते, हेलो, आदाब, कैसे हैं आप? एंड आई एम योर आरजे जागृति, टेक इट अवे।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक

0: रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया फीडबैक चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया ना गिड बैग।
5: RBI कहता है,
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक

हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना

बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने

का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल
अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है।

ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है।

समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये

0: आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ఆకాశవాణి ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన మన్ కీ బాత్ ప్రసంగానికి తెలుగు అనువాదం వింటారు.
3: ప్రియమైన దేశవాసులారా, నమస్కారం. మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో మరోసారి మీతో మాట్లాడడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. 2026 సంవత్సరంలో సగం గడిచిపోతోంది. ఈ 6 నెలల్లో మన్ కీ బాత్లో మన దేశ ప్రజలు సాధించిన ఎన్నో విజయాల గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. జూన్

0: Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold.
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई. इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है. भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा.
0: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation.

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow adds color to your life and आपकी लाइफ को रंगीन बनाने के लिए थोड़े से स्पेशल चीज़ें भी हम लेके आए हैं. सो वी आर गोना टॉक अबाउट 2026 डिजिटल डिटॉक्स वेव. ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स पीपल हैव रियलाइज दैट कॉन्स्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन पिंग्स फ्रॉम मल्टीपल मल्टीवर्स एप्स एंड 24/7 hyper connectivity are silently frying our nervous system. We are not suffering from major breakdowns, but rather micro burnout.

That constant feeling of being tired despite sleeping, external mental fatigue and short of attention span. आपको पता है जब आप ऐसा जैसे नोटिफिकेशन आते ही आप कुछ काम कर रहे हैं और सडनली आप चेक करने लगते हैं कि अरे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या, जबकि कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं रहता, वो जस्ट नोटिफिकेशन रहता है. जो आप किसी काम पे फोकस कर रहे हैं वो आपका फोकस तुरंत ब्रेक होता है. आपको पता है ऐसा बताया जाता है कि जो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, हर ऐप को बार बार क्लिक करते हैं, उसका भी डेटा रखा है कि एक इंसान अपना जो पर्सनल टाइम है वो खुद पे ना इन्वेस्ट करके कहीं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नोटिफिकेशन और इस पे वेस्ट कर रहा है. तो इसी के लिए हम इस डिजिटल डिटॉक्स वेव के लिए कुछ कुछ स्पेशल तरीके लेके आए, टेक्निक लेके आए. वो क्या है? द सोल्यूशन दैट इज करेंटली ब्रेकिंग द इंटरनेट ग्लोबली इज कॉल्ड 3-2-1 डिजिटल बाउंड्री रूल. हर चीज़ की एक बाउंड्री होनी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ की बाउंड्री होनी चाहिए, तो हम डिजिटल की भी बाउंड्री लेके आए हैं. इट इज़ वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल, हाईली इफेक्टिव. सो फर्स्ट रूल इज, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, और इसे अप्लाई भी करना है रोज. आज मोदी जी ने क्या बताया है कि अगर आप छोटी छोटी सी आदतें अपने जीवन में लेके आते हैं तो एक एक दिन वो एक बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में. तो ये जो आदत है आज से ही शुरू करते हैं ठीक है. पहला जो है, 3 आवर्स बिफोर बेड नो वर्क ईमेल्स और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. जी हाँ, एक बहुत सारे महान जो ज्ञाता हैं और व्यक्तित्व हैं वो कहते हैं कि जो आपका काम है ना, काम के घंटों में करिए, क्योंकि उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ शुरू होती है. तो ये जो पहला रूल है वही है, 3 आवर्स बिफोर बेड नो वर्क ईमेल्स और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो आपका पर्सनल होता है. अभी आपका फैमिली टाइम शुरू हो गया 3 आवर्स. 2 आवर्स बिफोर बेड नो सॉलिड फूड और हैवी डिजिटल कंटेंट कंजप्शन. स्टॉप स्क्रोलिंग एनी अदर थिंग दैट इज स्क्रोल लाइक रील्स और एनी थिंग. तो 2 घंटे पहले आपको ऐसा करना है कि ठीक है अब ऐसा कुछ करेंगे जिससे हम लाइक फैमिली टाइम हो गया, अच्छे से बातचीत हो गया, या आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, अपने दिमाग का जो थॉट है वो कहीं एक नोट पे डाल लीजिए, और कल क्या करने वाले में भी उसका प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन फ़ोन मत यूज़ करिए एटलीस्ट 2 घंटे पहले. लास्ट रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन आवर बिफोर बेड कंप्लीट स्क्रीन ब्लैकआउट, नो फोन्स, नो लैपटॉप्स, नो टीवी. इंस्टीड पिक अप अ फिजिकल बुक, टॉक टू योर फैमिली और जस्ट मेडिटेट. जी हाँ, ऐसा कहा जाता था और मैंने भी ये प्रैक्टिस किया है कि 1 घंटे पहले अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है. आपको याद है ना बचपन में कहते थे कि जैसे ही हम किताबें ओपन करते हैं हमें नींद आ जाती है, क्योंकि पता नहीं कैसे उन किताबों के पन्नों से एक अच्छी सी हवा चलती है जो मतलब बुक ओपन करते ही और आप सो जाते हैं. तो या ये सोने की बहुत अच्छी टेक्निक है. अगर आपको सोने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नींद नहीं आ रही है तो सिंपल एक किताब ले लीजिए. हाँ, फिजिकल, वो फ़ोन में नहीं पढ़ना है, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि 1 घंटे पहले फ़ोन रख देना है. आप एक फिजिकल हैंडबुक ऐसा लेके आइए और पढ़िए, और फिर देखिए हमारा ये 3-2-1 रूल कैसे आपकी लाइफ बदल देता है. बिलीव करिए, ये छोटी छोटी आदतें आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सुकून देंगी. ऐसे ही हम बहुत सारी बातें करेंगे एक साथ, सारी बातें नहीं करूँगी, गाने भी तो सुनने हैं. यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो इट्स कलर टू योर लाइफ. दिस इज योर आरजे जागृति, टेक इट अवे.

ये बदल गया है क्योंकि 28 जून को ही ये हम मना रहे हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी। वो एक सबसे दूरदर्शी और महान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में है। और हमारे तेलंगाना के लिए तो ये गर्व की बात और भी दुगनी हो गई है क्योंकि उनका जन्म यहाँ तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नरसिम्हा राव जी को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है क्योंकि 1991 में जब देश एक भयानक संकट से गूज रहा था जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस टाइम उन्होंने एलपीजी दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति लाकर देश के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोला। आज इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। उसकी बुनियाद इसी महान शख्स ने रखी थी। वो 17 भाषाएं बोल सकते थे, ट्रूली अब्सोल्यूट लेजेंड। आप सोच सकते हैं कि हम एक दो तीन भाषा बोलने में भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इन्होंने 17 भाषाएं, 17 लैंग्वेजेस इनको बोलना आता था। ऐसे ही कुछ शख्स आपके जीवन में आते हैं जो इंस्पायर करते हैं, जो कहते हैं कि कुछ भी आपके लिए कम नहीं है, आप अपनी पोटेंशियल को पहचाने। और कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी हैज़ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, हमें उनको पता नहीं होता, हम उसको उसको हम सोचते ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। और जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करते, हमें अपनी पोटेंशियल पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, कि आप एक दिन ऐसा 5 किलोमीटर वॉक करते हैं तो आपको लगता है आपकी जो कैपेसिटी है 5 किलोमीटर की है। फिर एक दिन आप कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है आज मैं 6 किलोमीटर चलते हैं। 6 किलोमीटर चलने के बाद आपको पता चलता है, आपकी बॉडी, आपके नर्वस सिस्टम को पता चलता है, ओके आई एम कैपेबल ऑफ 6 किलोमीटर वॉक। ऐसे ऐसे अगर हम एक एक स्टेप बढ़ाएंगे तो हम अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी बातें करनी है और टाइम भी हो रहा है 12:44:37 इन द स्टूडियो क्लॉक। और जी हाँ, याद है ना, 1 बजे से हमारा हेलो रेनबो भी शुरू होने वाला है, जहाँ पे हम, हमेशा तो मैं ही बात करती हूँ, इस बार हम आपके मन की बात सुनेंगे कि आप क्या बात करना चाहते हैं। जी हम टॉपिक भी देंगे, अपना फ़ोन नंबर भी बताएंगे, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अभी अगर मैं अपना इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप देखूँ तो बहुत सारे गुड आफ्टरनून मैम और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं वो भी पढ़ूंगी और आपसे साझा भी करूंगी। तब तक एक गाना सुनते हैं, साथ में सुनते हैं, लेट्स टेक इट अवे।

वाले हैं आपके फेवरेट शो लाइव लाइव फोन कॉलिंग रेनबो का भी समय आने वाला है। उससे पहले चलिए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में मेरे सामने वाली खिड़की में। जी हाँ, अरे खिड़की से याद आया, बारिश कभी कभी बहुत तेज होती है, कृपया अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए। ठीक है भाई।

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow adds color to your life, or Rainbow ke saath life aur rangin. Aur ye rangin segment bhi aa gaya hai. Hello Rainbow ka, jahan ab hum keval baat nahi karenge, aapki baatein bhi sunenge. Ji haan, aapko yaad hai na hamara live in phone program jo 1 baje se shuru hota hai, wo shuru ho chuka hai. Aur chaliye number bhi bata deti hoon. Pehla number hai 0402323 0030. Ek aur number hai 0402323 4821. एक और नंबर भी है 0402970 4715. और जस्ट इन केस अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग या व्हाट्सएप मैसेजिंग भी कर सकते हैं, और उसका नंबर है 4023234822. एक बार फिर से बोल देती हूँ, 4023234822. जी हाँ, आप ये बोलेंगे जागृति आपने तो नंबर दे दिया लेकिन आज का टॉपिक तो बताया ही नहीं. तो जी हाँ, हम टॉपिक भी बताएंगे. हम ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में एक ऐसा कौन सा रेसिपी है, कौन सा

0: नुस्खा है जो आप बनाते हो, आप अपनाते हो, जिससे इस मानसून में आपको हेल्प मिल सके? कुछ कुछ एक जो डिश है जो आप इस मानसून में पीती हो और आपको बहुत पसंद है, तो जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो हम आपकी आपसे उसी के बारे में बात करेंगे। और चलिए कुछ देख लेते हैं मैसेजेस को भी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। एक सरवर अली सर का है, सर ने मुझे मेड इन इंडिया का कैसेट भेजा है, तो ये बता दें हमारे लिसनर्स को कि इनके पास एक रेडियो का शोरूम है बहुत अच्छा, और एक एक लगता है कि इनको रेडियो से बहुत प्यार भी है। मैंने शुरू शुरू में मेड इन इंडिया का गाना बजाया था जो अलीशा चुनाव जी का है, इन्होंने मुझे उसकी कैसेट, वो फोटो भेजी है जिसमें अलीशा चुनाव जी का फोटो है, और बहुत ही प्यारी कैसेट है। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए। और कुछ और मैसेजेस भी आए हैं, कुछ शायरी है, इरशाद बोलिएगा लेकिन इरशाद कहना पड़ेगा। तो हम आगाज़ करते हैं। आंखों में अरमान दिया करते हैं, हम सबकी नींद चुरा लिया करते हैं, अब जब जब आपकी पलकें झुकेंगी समझ लेना हम आपको याद किया करते हैं। वाह वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच सर। और कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं कौन है।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: ये रमेश बात कर रहा हूँ। मैंने
0: हाँ रमेश सर बोलिए।
1: चाबी बहुत अच्छा दी मैडम, रेसिपी बता रहे हो रहे ना आपने।
0: हाँ, आप ऐसी कौन सी रेसिपी है जो आप इस मानसून में खाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको
1: मैडम अच्छा, हम लोग धूप का लेने तेलुगु सुन रहे मैडम।
0: तेलुगु समझ सकती हूँ सर, बट
1: हाँ जी
0: बोल नहीं
1: रमेश
0: सकती,
1: बात
0: तो
1: कर रहा
0: आप
1: हूँ मैं।
0: बात कर सकते हैं, मैं हिंदी में आपको रिप्लाई दूंगी, चलेगा आपको?
1: आयते तेलुगु लो आयते।
0: हाँ
1: నేను పచ్చళ్ళు పెడతాను కానీ మేడం,
0: హా
1: పచ్చళ్ళు ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో పెడతాం అనమాట. కానీ ఇప్పుడు వానాకాలంలో తింటే చాలా వేడిగా ఉంటుంది, అంటే మనిషి శరీరానికి వేడి చేస్తుంది, హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. అది అన్నంలో కలుపుకుని తిన్నా ఇంకా చపాతీకి తిన్నా చాలా బాగుంటుంది మేడం. అది
0: है ना సర?
1: దాంట్లో కూడా
0: హా
1: పచ్చళ్ళు ఉంటాయి మా దగ్గర.
0: హా హా
1: ఆ పచ్చళ్ళు అన్నంలో కలుపుకొని తిని కొంచెం ఘీ వేసుకొని
0: హా
1: కొంచెం
0: హా
1: ఉప్పు కలుపుకొని తింటే కూడా వేడి ఇస్తుంది శరీరానికి,
0: హా
1: హెల్త్
0: హా
1: కూడా చాలా మంచిది అనమాట. ఇంకా షుగర్ పేషెంట్ మేడం, ఇది ఉంటే కదా వామ ఉంటుంది కదా, ఆ
0: హా
1: వామ నీళ్ళలో ఒక రాత్రి ఇది తెల్లారి తింటే షుగర్ బీపీ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది మేడం.
0: జీ సర్ జీ, బహుత్ అచ్చా లగా ఆప్నే షేర్ కియా.
1: ధన్యవాద్. శ్రీ రమేష్ ఉస్మాన్ గారు.
0: హా హా థ్యాంక్ యూ రమేష్ రమేష్ సర్. సో जी वो बता रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने अपने डिशेस के बारे में बताया, और उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई कि हर चीज़ में उन्होंने घी बताया है। घी बचा एक सेकेंड, घी से क्या होता है कि वो जो उसका टेस्ट होता है और बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें मुझे समझ आई, बहुत अच्छे से समझ आई, बट वो बात कर रहे थे तेलुगु में, मैंने उनको हिंदी में रिप्लाई दिया। ऐसे और भी कॉलर्स हैं लाइन पे, देखते हैं। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम,
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: बानामा
0: हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं कैसा है? अच्छा है भाई।
0: आप आज का टॉपिक सुने सर? आज का टॉपिक है कि वो कौन सी।
1: मानसून में क्या क्या
0: हाँ
1: चाहिए
0: हाँ
1: मैडम?
0: सर, यही है।
1: हाँ
0: हाँ यही है।
1: मानसून में तो रोटी सज्जे सज्जे सज्जे सज्जल मालूम
0: आप थोड़ा बताइए उसके बारे में।
1: जारी जारी सज्जलू सज्जलू जारी।
0: अच्छा हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में।
1: हाँ वो आता है उसको रोटी बनाते हैं ना।
0: हाँ हाँ
1: हाँ रोटी दिए, रोटी खाए तो बहुत हिम्मत रहता है। लेकिन हम स्ट्रेंथ आता है, बॉडी भी स्ट्रेंथ आता है। रोटी खाए तो रोटी भी हमें क्या कहते हैं, रोटी भी अभी क्या कहते हैं, संगठे राई संगठे है ना, राई संगठे मालूम
0: हाँ हाँ सर, सुना है इसके बारे में।
1: सुनाया सुनाया। राई संगठी है ना, राई संगठी बैगन के फुल्स कर ले को वो मिला को खाए तो अच्छा रहता है, मतलब बिल्कुल आदमी को अच्छा भी रहता है, टेंग तो आता है। अच्छा रहता है माँ।
0: थैंक यू सो मच। और कोई आपकी यादें हैं मानसून की जो आप शेयर करना चाहते हैं? मानसून की कोई यादें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, कैसे बारिश हो रही है और आपको वो चीज़ ऐसे रख के, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि बारिश हो रही है तो
1: तेलुगु
0: तेलुगु में तो नहीं कह सकती सर, लेकिन मैं ये आप ये जब बारिश होती है तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आप ये बता सकते हैं?
1: बारिश में क्या कहते हैं, बैठ को बैठ को बाहर बैठ को देखता रहते हैं, नहीं तो भी छोटी छोटी जेठा जाको

0: पैसा
1: हाँ
0: मिलता।
1: वो जी, वो सुकून होता है, मतलब बारिश को देखना कि ऐसे ही कुछ काम नहीं करना है और बस बारिश को देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक
0: अच्छा माँ,
1: यू।
0: तेरा नाम माँ?
1: जागृति।
0: हाँ जागृति, अच्छा है ना माँ,
1: हाँ
0: तुमसे अच्छा
1: हाँ
0: बात
1: हाँ
0: करता है तो तुम तुम्हें अच्छा बात करते हैं, तेलुगु भाषा बात कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसा कोशिश करती हूँ। थैंक यू, थैंक
0: अच्छा माँ,
1: यू। जी हाँ, बारिश हो रही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप शांति से बैठ जाइए। और क्या होता है ना, उस जो देखते हैं बारिश की बूंदों की, उसकी जो आवाज़ होती है, उससे भी आपके मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, मतलब वो सुकून होता है। बस इंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए और वो जो गिरती हुई बारिश की बूंदों को देखिए, बस इससे भी आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और भी कुछ कॉल्स आ रहे हैं, देखते हैं। हेलो हेलो,
0: गुड आफ्टरनून मैडम,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: मैं फिसल बंडे से महजबीन सोशल वर्कर बात कर रही हूँ।
1: जी महजबीन जी,
0: मैं आज बनाई, देखो, खोपरा काजू और पिस्ता डाल के इमली की चटनी,
1: इमली की
0: खाना
1: चटनी।
0: गरम गरम खा के बैठी, जल्दी
1: हाँ
0: खा लेती हूँ मैं, वक्त पे खाना खाना बोलती हूँ बच्चों को भी,
1: हाँ बहुत
0: देर से
1: ज़रूरी है।
0: खाते, रात में भी असर के बाद खा, सूरज डूबने से पहले खा लेती हूँ मैं,
1: हाँ
0: तो यही मशवरा देती हूँ, फाइन और फिट रहते।
1: जी, तो
0: और
1: आपको
0: ठंडे में बोलते ऑरेंज जूस और बालंगा कैरी का शरबत, ये
1: अच्छा।
0: अच्छा लगता है, मानसून में भी आइसक्रीम अच्छी दिखती,
1: हाँ
0: बहुत
1: जी,
0: अच्छा दिखा आपसे बात करके, थैंक
1: हाँ
0: यू।
1: हाँ थैंक यू। तो वो बता रही थी, कुछ लोगों का ये विश होता है कि बारिश में ना आइसक्रीम खाना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सब लोग कहते हैं ना ठंडी हो रही है क्यों आइसक्रीम खाना, बट उस ठंड में भी जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना तो मज़ा आता है। ऐसे ही कुछ सजेशंस वो भी दे रहे थे हमें, और देखते हैं कौन है। हेलो,
0: गुड आफ्टरनून जागृति मैडम,
1: गुड आफ्टरनून।
0: मैं नरसिम्हा रेड्डी प्रेमावती पेज से बोल रहा हूँ मैडम। तो
1: हाँ नरसिम्हा जी बोलिए।
0: मैडम, बारिश में मैडम जो भी है, मैं तो गरम गरम खाने का दिल करता मैडम,
1: अच्छा
0: जो भी है, मतलब अच्छी चीज जो भी है, लेकिन ये बारिश में जो है ना, ये हरे पत्ते होते हैं ना, जो भी पालक वगैरह,
1: हाँ
0: वो नहीं खाना चाहिए मैडम।
1: अच्छा
0: वो क्या है, वो अभी उसमें पानी में बैक्टीरिया, उसमें प्रोडक्ट होता है उसके अंदर, तो
1: अच्छा
0: बस वो अगर खाए भी तो बड़े मुश्किल से गर्म पानी में धो करके बना के खाना।
1: ओके
0: और जो है ना, बारिश में मैं एंजॉय करने का मैडम, बालकनी में बैठे मस्त चाय वाय पकौड़ी खाते हुए, वो
1: मस्त।
0: बरसात का पानी टपकते रहता ना मैडम,
1: हाँ हाँ वो
0: उसमें एक तरफ का म्यूजिक आता मैडम, हाँ,
1: जी, बिल्कुल
0: मतलब रोड पे जाने का पानी में एक म्यूजिक आता, नीचे से गिरने के पानी से एक आता, बहुत ऊपर
1: हाँ
0: से गिरता पानी में, वो अलग नहीं, वो म्यूजिक एंजॉय करते हुए चाय पीते मस्त रहता हूँ मैडम मैं तो।
1: बहुत सही बात कही है आपने,
0: थैंक यू मैडम।
1: थैंक यू। कितनी सही बात, ऐसे कुछ ऑब्जर्वर होते हैं, मैं उनको सुन रही थी और सोच रही थी कि उन्होंने कैसे बताया कि जो बारिश की पानी होती है, जो घर पे वो सुनते हैं वो कुछ और है, जो रोड पे सुनते हैं तो कुछ और है, और जब कहीं बाहर जाते हैं कुछ और है। मतलब इतना ऑब्जर्वर कैसे कोई, मतलब कैसे कर सकते हैं, जस्ट जस्ट अमेजिंग। और उन्होंने कहा कि वो जो बारिश की बूंदें होती है उसमें म्यूजिक होता है। जी हाँ, म्यूजिक हैज़ मैजिक, ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। और वो हमको ये भी हिदायत दे रहे थे, ऐसा सजेशन दे रहे थे कि पालक को थोड़ा धो के गर्म पानी में खाना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ कीड़े हो सकते हैं। जी हाँ, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, हम सबसे बात करेंगे, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं वो भी देखेंगे। एक छोटा गाना भी सुन लेते हैं ना, चलिए साथ में सुनते हैं, राहत अली खान जी का जग घूमिया, थारे जैसा ना कोई।

0: Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. Rainbow adds color to your life, and Rainbow के साथ life है रंगीन, और ये है आपका रंगीन segment, live in phone in program. Hello Rainbow. जी हाँ, हमारा जो topic है आज का कि कभी कभी ना जो मौसम बदल रहा है इससे आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, और कभी कभी ये जो मौसम में बदल रहा है उसकी इम्यूनिटी में हमारे जो स्ट्रांग नहीं होता, उसके लिए कुछ जो नुस्खे हैं आपके जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, क्या है वो हमें आप बता सकते हैं अपनी बातों में. एक बार फिर से नंबर बता देती हूँ, 0402-323-0030. 040 जो है हमारा वो कोड है, तो उसको लगाना मत भूलिए. दूसरा नंबर जो है 0402-323-4821, एक और नंबर भी है 0402-970-4715, और कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं. हेलो
1: हेलो हेलो जागृत, नमस्कार.
0: हाँ नमस्कार जी. आपका आपका नाम?
1: हेलो
0: हाँ, आपका नाम बता दीजिए.
1: ना पेर वॉलेट प्रभाकर राव अम्मा.
0: हाँ प्रभाकर जी.
1: बाउन नारा.
0: हाँ हाँ एकदम मस्त. आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है.
0: जी आज का टॉपिक आपका टॉपिक. హలో హా హా ఆన్ ఇయర్ హే సార్.
1: ఈరోజు టాపిక్ గురించి అంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇంతకుముందు మా మిత్రులు నరసింహారెడ్డి గారు ప్రేమావతిబేట నుంచి చెప్పినట్టుగా వర్షం పడుతుంటే వేడి వేడి పకోడి మిర్చి బాల్కనీలో కూర్చొని మా ఇంటి ముందే అవి టేకు చెట్లు ఉన్నాయన్నమాట. టేకు ట్రీస్ వాటికి పెద్ద పెద్ద ఆకులు ఉంటాయి, పచ్చారట బడబ్బడ.
0: जी जी एकदम सही, एकदम समझ आया आप क्या कह रहे हैं.
1: उसकी ऊपर गिरे तो सब सब बोल के साउंड आती.
0: हाँ हाँ
1: वो साउंड से.
0: हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, लेकिन मुझे आपकी बातें सुनाई दी. हेलो, तो ये बता रहे थे, थोड़ा उनसे कनेक्शन इशू हुआ, शायद पूरी बातें उनकी सुन नहीं पाई, लेकिन जितनी मैंने सुनी है उन्होंने बताया कि ऐसा बालकनी में बैठ के मिर्ची की पकौड़ी खाना, वो सुकून होता है, गरम गरम मिर्ची की पकौड़ी, और जो पत्ते होते हैं उस पे जो बारिश की बूंदें गिरती है तो एक एक म्यूज़िक सा आता है, कितना अच्छा लगता है. जब मुझे ऐसे नेचर से जो प्रेमी होते हैं, प्रकृति के प्रेमी कुछ लोग बात करते हैं कि वो एक छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते हैं, पानी बारिश की बूंदों में भी म्यूज़िक ढूंढते हैं, एंड म्यूज़िक हैज़ मैजिक. यस, देखते हैं और कौन है कॉल पे.
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो स्वागत है मार्ग जागृति.
0: हाँ हाँ सर,
1: मैं सोनू बात कर रहा हूँ. आपका टॉपिक है मौसम में क्या खाना है. मेरे को तो हमेशा साग पसंद है.

0: अरे मौसम में नीम का जो फूल आता है, नीम का घर भी करके देना, शहर पांच खाना छतना का, और कोई भी पास।
1: आप
0: और
1: आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आप
0: हाँ
1: आपके
0: मैं आ रहा हूँ, थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, बस स्टैंड है ना,
1: हाँ
0: हेलो। हाँ अभी थोड़ा बाहर है, बस स्टैंड में मेरा भंडेल आ जाएगा, आपको भी देखे होंगे। हाँ ये मौसम में थोड़ा
1: हाँ
0: खास मेरे को पसंद है, और खाने के लिए आपका ये जो करेला है सर, नहीं करेला पकौड़ी माने बना के देते हैं, वो भी खास खाने को पसंद है। पहला दम खाना और महंगा तो खाना, मगर खास ज्यादा पसंद है, ज्यादा से ज्यादा नीम के पत्ता और फूल खाते खाने को मेरे को अच्छा लगता।
1: अच्छा
0: हेलो, आज प्रधानमंत्री जो प्रेरणा दिए सारा देशवासी को,
1: हाँ
0: और ये बहुत जो पीढ़ी को बहुत आगे भी बढ़ाएगा, और इसलिए मैं स्वागत कर रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ प्रधानमंत्री को, और लेसरों को भी बोल रहा हूँ, इसको भी आप प्रचार प्रसार करिए। बोले तो सब जने रेडियो नहीं सुन रहे, बहुत जने रेडियो से ऑगन दूर रहते, तो सुविधा उनको नहीं मिलता, मगर आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक ऐसा सॉन्ग दोगे आपका दिन, आपको मालूम है मेरे को कौन सा आप सबको ऐसे तो मालूम है, आप सब लोग मेरे को भेजन है, और खूब खुशी हूँ आप मेरा फोन रिसीव करें, इसलिए भगवान की प्रणाम दो, हमेशा
1: आप
0: खुश रहो, आगे बढ़ो। हाँ
1: जी
0: बोलो।
1: जी सर, श्योर, थैंक यू सर। एक और कॉलर्स भी हैं, देखते हैं। हेलो,
2: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब जयगृति जी।
1: आदाब, कैसे हैं आप? अपना नाम बता
2: जी
1: दीजिए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शेर खान बोल रहा हूँ, तलाब कट्टा अमन नगर से।
1: शेर
2: सभी
1: खान
2: सुनने वाले
1: जी,
2: भाई
1: जी
2: बहनों,
1: जी
2: दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब।
1: जी
2: अल्लाह
1: जी
2: से दुआ करता हूँ हर मौसम में, हर मानसून में आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
1: जी जी बिल्कुल।
2: जी तो जागृति जी, ये जो मानसून में जो भी पसंद है, मतलब हमको बारिश में जो भी गर्म चीज मिल जाती है तो बस वो भी पसंद आता है, गर्मियों में कुछ ठंडा मिल जाए तो वो भी पसंद आता है, और बारिश में जो है तो कोई गर्म चीज भी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन जो बारिश के पानी का जो आवाज होता है, हमारे गांव में हम एक पट्टियों के घर में होते थे, तो जिसमें ऊपर जो है तो लोखंड के टीन होते थे, और उसमें जो बारिश की आवाज आती थी ना, इतनी मधुर आवाज आती थी, और इतनी अगर इंसान बेचैन भी हो तो फिर वो आवाज सुन के एक ठंडक, बारिश से ठंडक भी लगती थी और वो आवाज सुन के नींद भी आ जाती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो सुकून होता है उन बारिश की बूंदों की
2: हाँ
1: आवाज
2: बारिश में
1: में।
2: बहुत सुकून होता है जो उसकी आवाज पड़ती है, और
1: हाँ
2: हल्की हल्की पहली पहली बारिश हो तो उसमें हल्का हल्का भीगने में भी मजा आता है, लेकिन जब बारिश पुरानी हो जाती है तो उसमें भीगना भी नहीं चाहिए ज्यादा, अपने आप को
1: हाँ
2: इसमें इस मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन में होने के जो ज्यादा चांसेस रहते हैं, उससे अपने आप को सेफ भी रखना है, बचाना
1: बहुत
2: भी है, कंट्रोल में
1: प्यार।
2: रहना है, हर मानसून में अपने आप को कंट्रोल में रख के उसको एंजॉय करना जरूरी है, ज्यादा भी मतलब बेकाबू होना, आउट ऑफ कंट्रोल होना भी हमारे सेहत पे
1: जी
2: असर
1: जी
2: कर जाता है।
1: जरूर जरूर
2: और हमारे मुमताज बाजी को भी सलाम है, मैजरीन बाजी को, मोहम्मद अफजल साहब को भी, और आप मेरा कॉल लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
2: एक
1: बहुत
2: गाने की
1: धन्यवाद।
2: रिक्वेस्ट थी अगर आप पूरा कर दे
1: हम
2: तो।
1: कोशिश करेंगे, आपके गाने थोड़े से रहते हैं जो हमें नहीं मिलते सिस्टम में, बट हम कोशिश कर सकते हैं। आप
2: हाँ
1: बताइए गाना।
2: हाँ समझता हूँ मैं, नहीं मिलते होंगे इसीलिए प्ले नहीं होते, नहीं तो आप इतने अच्छे आरजे हैं कि बोलते बराबर प्ले हो जाता है जब अगर आपको मिल जाता है, तो मैं समझता
1: जी
2: हूँ उस बात को।
1: जी जी आप
2: हाँ
1: बताइए गाना क्या है आपका।
2: तो एक पुरानी फिल्म है शोर, मनोज कुमार जी की,
1: श्योर
2: उसमें गाना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला जो लगे उस जैसा, मुकेश की और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: ठीक है। पानी रे पानी,
2: हाँ
1: आपको
2: तेरा
1: पता
2: रंग
1: है
2: कैसा, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है शोर, मनोज कुमार पे फिल्माया गया है।
1: जी, बिल्कुल एक कोइंसिडेंट बताती हूँ मैं, अगला जो गाना बजाने वाली थी वो यही गाना था, पानी रे पानी, लता मंगेशकर जी का। आशा करती
2: क्या
1: हूँ
2: बात है, आज आज आज सही बैठ गई।
1: हाँ, एकदम सही। मतलब मैं कोशिश, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि गाना वही है जो आप कह रहे हैं। बाकी सुनते हैं साथ में गाना कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत शुक्रिया आपका।
1: कितना अच्छा बातें करते हैं शेर खान जी, और उनकी जो बातें होती हैं इंस्पिरेशनल होती हैं। और उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक एक उसमें एक एक बाउंड्री में रह के इंजॉय करना चाहिए। जब कभी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल जाके खूब बारिश में भीग जाओ, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके अपने सेहत का भी ख्याल करना है। उन्होंने बताया है कि वो जो जिस घर में वो रहते थे, वो जो म्यूज़िक आता है, हाय मुझे आज जो पूरी बातें हो रही हैं, मैं तो बहुत ही

ओवरवेम्ड हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि जो बारिश की बूंदों में म्यूजिक होता है ना, उससे सुकून होता है। सच बताऊं वो मेरा फेवरेट है, एंड ये जान के अच्छा लग रहा है जो मेरा फेवरेट हो बस मेरा फेवरेट नहीं है, सबका फेवरेट भी है। और भी कॉल्स हैं, गाने हैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं, सुन के फिर हम कॉल्स लेते हैं और बात करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो इट्स कलर टू योर लाइफ, टेक इट अवे।

0: साथ बारिश में भीगना भी अच्छा लगता है, बारिश में रसोई में पकवान करना, फैमिली के साथ सब एंजॉय करना, और गरम गरम काफी अच्छा है, जैसा पकौड़ी मीठा जो भी होता, गरम पीकर और फैमिली के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी था मेरा कोशिश बोलने का।
1: थैंक यू मुमताज
0: और एक
1: जी।
0: गाना
1: हाँ हाँ बताइए,
0: बहुत
1: मेरे
0: अच्छा
1: पास
0: लगा आपसे
1: ऑलरेडी
0: बात
1: गाने की। हाँ
0: करके।
1: और क्या है बताइए।
0: हाँ, शेर खान भाई जो बाल बोले ना गाने के रिक्वेस्ट, उनका गाना पुराना था वो,
1: हाँ
0: ये
1: मुझे मिल
0: कान
1: नहीं रहा है।
0: के
1: हाँ मैंने कोशिश किया एक्चुअली, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैंने उनसे बोला, उनके गाने ना इतने अच्छे होते हैं कि मुझे मेरे सिस्टम में मिलते ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ। आपका कैसे
0: वो भी बोलती हूँ ना, माँ के बारे में जो गाना बोले थे वो गाना में पहली बार सुनी, बहुत अच्छा लगा माँ के बारे में, जिन्होंने फरमाइश करे थे पहले, और वो कोई हाँ कोई दूसरे आते डाले थे गाना। अभी मेरा गाना तो देखो अभी अभी मैं भूल गई गाना। ठीक है, मैं फिर कभी कभी कोशिश
1: कोई
0: करके
1: बात नहीं,
0: आपसे
1: आप
0: बात
1: हमें
0: करते
1: मैसेज भी कर
0: हैं।
1: सकती हैं और फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में हम जब
0: नहीं
1: मिलेंगे बता सकती हैं। बहुत बहुत
0: अच्छा,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। नहीं माँ नो जगती तो ब्लाइंड तो मैसेज नहीं कर सकती हूँ,
1: अच्छा
0: कोशिश करती हूँ।
1: कोई
0: हाँ
1: बात
0: कोशिश,
1: नहीं, कोई बात नहीं, हम आपसे
0: ठीक है
1: फिर
0: ठीक
1: से
0: है।
1: बात कर
0: पुराना
1: लेंगे।
0: गाना, अच्छी बात, पुराना गाना कोई भी लगा दीजिए अच्छा
1: हाँ ठीक है,
0: लगता।
1: वो कोशिश करेंगे। मुझे
0: ठीक
1: शेर खान जी का भी गाना मैं ढूंढ रही
0: हाँ
1: हूँ,
0: ठीक है
1: और
0: ठीक
1: कोशिश। उनके गाने बहुत ही लेकिन यूनिक होते हैं, मैं
0: है।
1: कहूंगी। मैं हमेशा वो
0: हाँ
1: बता के जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: हाँ सही है, धन्यवाद।
1: जी। हाँ बारिश में जो गर्म गर्म पकौड़े खाते हैं वो सुकून करते हैं। सारे सजेशन हमें सेम है, मेरा भी फेवरेट है ना। और भी कॉल्स हैं, एक और कॉल देखती हूँ। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो रेनबो,
2: गुड आफ्टरनून मैडम।
1: गुड आफ्टरनून।
2: मैं रमेश बात कर रहा हूँ। पानी में अच्छा भीगो तो बहुत अच्छा दिखता है मैडम।
1: हाँ
2: अच्छा, और क्या हमारे ग्रैंडसन बच्चों को कागज
1: हाँ हाँ
2: के बोट, कागज के बोट बना के पानी में उसको डाल दिया तो हमारे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते, और बहुत दूर तक तो चले जाता हो।
1: हाँ वो बचपन की यादें जी, बिल्कुल
2: हाँ
1: कहा।
2: बच्चों ने, वो बच्चे अभी हम लोग जो कर रहे हैं हमारे बच्चों को वही बता रहे, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं। और क्या गरम गरम मिर्ची भजी और पकौड़ी और गरम गरम ईरानी चाय पीना बहुत अच्छा दिखता है ये बारिश में।
1: जी ईरानी चाय की तो बात ही अलग है।
2: बिल्कुल, ईरानी चाय, गरम गरम मिर्ची भजी और पकौड़ी गरम गरम खाए तो पानी
1: हाँ
2: में बहुत अच्छा दिखता है।
1: हाँ जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो गरम गरम खाने का मजा होता है ना वो कहीं नहीं है। और कहा जाता है कि जैसे खाना बने उसके 6 घंटे या तक आप वेट मत करो, मतलब कोशिश करो कि गरम गरम खाएं, क्योंकि जो उसके न्यूट्रिशंस है ना, आप गरम खाते हो तो तुरंत आता है। आजकल क्या होता है कि खाना बन जाता है लेकिन हम तो फ़ोन में बिजी होते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे ठीक है थोड़ी देर बाद खा लेंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, लेकिन नहीं, आपको अपने खुद को प्रायोरिटी देना है। जो आप फ़ोन पे काम कर रहे हैं, आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, थोड़ा वेट कर सकता है लेकिन खाना वेट नहीं कर सकता, राइट? खाने को प्रायोरिटी दो। वो कैसा बात कर रहे थे कि एक बहुत ची अच्छी चीज़ उन्होंने बताया कि बारिश में वो कागज़ की नाव, याद है वो बचपन का दिन जब आगे सामने बारिश होती थी और हम छोटा सा कागज का नाव बना के उसमें सोचते थे, अरे आज तो हम सेलर बनेंगे, आज तो हम मस्त, हमारी नाव किसकी, लाइक हम अपने भाई बहनों के साथ वो कंपटीशन करते थे कि आज किसकी नाव सबसे आगे जा रही है। ऐसे बहुत सारी बारिश की यादें हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे लगी पूरे सजेशन के दौरान कि जो आप चीज़ें खा रहे हैं गरम गरम खाइए, जिससे आपको पौष्टिक तत्व तो सारा मिले। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, गाने का फरमाइश भी है, और सब करेंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ। टेक इट अवे।
3: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ ఆ ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
4: బ్రో ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
5: హే వెరీ హంగ్రీ, వాట్ స్పెషల్ టుడే?
6: బిర్యానీ, కబాబ్స్, హలీం.
7: బట్ వెయిట్, దిస్ మోర్.
8: మోర్ దాన్ ఫుడ్, ఇట్స్ ద స్టోరీస్ బిహైండ్ ద రెసిపీస్, ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద కిచెన్స్ అండ్ ద ఫ్లేవర్స్ దట్ షేప్డ్ అవర్ సిటీ.
5: అండ్ వేర్ డు వి టేస్ట్ ఆల్ దిస్?
7: ఆన్ జష్నే హైదరాబాద్ every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
8: From Charminar's Irani Chai

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेमो पर। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 15 सेकेंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है और प्रोग्राम नए रंग का। सामाइन की खिदमत में सनालमाज बावजीर का पुरखलूस आदाब पेश है और प्रोग्राम नए रंग।

आगाज पर सुनिएगा हर्फे ताबिंदा, तहरीर और पेशकश होगी मशकूर अहमद की। इसके बाद आप सुन सकेंगे नेशनल पल्स पोलियो डे क्यों मनाया जाता है।

और फिर आप सुनेंगे भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्म गीत, और साथ ही आज हम बात करेंगे मलिकाए तरन्नुम क्वीन ऑफ मेलोडी सुर कोकिला पद्मा भूषण गुलकारा अलका याग्निक की।

रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, रिश्तों की दीवार में दरार डालने वाला खामोश जहर अना। ये एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता, न उसकी कोई आवाज होती है, लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते दिलों में जगह बना लेता है। और फिर वही दिल जो कभी एक दूसरे के लिए धड़कते थे, दूर होने लगते हैं। सामीन, अक्सर हम ये समझते हैं कि रिश्ते इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि मोहब्बत खत्म हो गई, लेकिन अगर हम सच्चाई का सामना करें तो मालूम होगा मोहब्बत कम नहीं होती बल्कि अना बढ़ जाती है। एक छोटी सी बात, एक मामूली सा जुमला, एक गलतफहमी, और हम उसे सिर्फ इसलिए बढ़ाते जाते हैं क्योंकि हम झुकना नहीं चाहते। बात इतनी सी थी मगर बढ़ती गई, बात इतनी सी थी मगर बढ़ती गई, अना बीच में आई और दूरी बढ़ती गई। सामीन, याद रखें, रिश्तों में जीत हमेशा हार होती है। आप बहस जीत सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसी लम्हे आप एक खूबसूरत रिश्ता हार जाएं। सामीन, आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये अना आखिर है क्या। अना वो एहसास है जब इंसान खुद को बड़ा समझने लगता है, जब वो अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार कर देता है, जब वो ये सोचता है कि मैं क्यों झुकूं, यही मैं दरअसल रिश्तों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। मैं की दीवार जब ऊंची हो जाए तो रिश्तों की राहें बंद हो जाती हैं। सामीन, हमारी जिंदगी में बहुत से रिश्ते होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, शरीक हयात, ये सब रिश्ते मोहब्बत, एतमाद और समझदारी से जुड़े होते हैं, लेकिन जब उनमें आना शामिल हो जाए तो यही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, हालांकि दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। दोनों चाहते हैं कि बात हो जाए, लेकिन बीच में सिर्फ एक चीज होती है, आना। पहला सबक, माफी मांगने में पहल करें। सामीन, हम में से अक्सर लोग माफी मांगने को अपनी कमजोरी समझते हैं। हम कहते हैं अगर मैंने माफी मांग ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि ये जाहिर करता है कि आपके नजदीक रिश्ता ज्यादा कीमती है। जो इंसान झुक जाता है वो हारता नहीं बल्कि वो दिल जीत लेता है। झुकने से रिश्ते टूटते नहीं, ये तो मोहब्बत का हुनर होता है। दूसरा सबक, लफ्जों का ख्याल रखें। सामीन, इंसान के अल्फाज उसका तारुफ होते हैं। गुस्सा एक फितरी अमल है, लेकिन गुस्से में कहे गए अल्फाज अक्सर रिश्तों को तोड़ देते हैं। याद रखें, गुस्सा वक्ती होता है लेकिन अल्फाज देरपा होते हैं। एक सख्त जुमला, एक तलख बात किसी के दिल पर ऐसा जख्म छोड़ सकती है जो बरसों ना भरे। जख्म तलवार का भर जाता है मगर लफ्जों का जख्म दिल में रह जाता है। तीसरा सबक, मैं से हम तक का सफर। सामीन, रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब हम मैं से निकलकर हम तक पहुंचते हैं, जब हर बात में सिर्फ अपनी पसंद, अपनी अना, अपनी जिद को तरजीह दी जाए तो दूसरा इंसान खुद को गैर अहम महसूस करने लगता है। रिश्ता वो नहीं जहां एक जीते और दूसरा हारे, बल्कि रिश्ता वो है जहां दोनों एक साथ जीते। रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां मैं नहीं हम होता है। चौथा पहलू, खामोशी भी नुकसान देती है। सामीन, कभी कभी अना हमें बोलने भी नहीं देती। हम नाराज होते हैं लेकिन इजहार नहीं करते, हम तकलीफ में होते हैं लेकिन बताते नहीं। ये खामोशी आहिस्ते आहिस्ते फासले बढ़ा देती है। याद रखें, बात न करना भी रिश्तों को कमजोर कर देता है। पांचवा सबक, पहल करना सीखें। सामीन, अगर रिश्ता कीमती है तो पहल करने में देर न करें। एक मैसेज, एक कॉल, एक मुस्कुराहट, ये छोटी छोटी चीजें बड़े मसाइल हल कर देती हैं। सोचिए, अगर आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो शायद सामने वाला दो कदम आगे आ जाए। सामीन, मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जिनमें कभी इख्तिलाफ ना हो, बल्कि वो होते हैं जहां इख्तिलाफ के बाद भी मोहब्बत बाकी रहे, जहां कोई एक मुस्कुरा कर कह दे चलो छोड़ो भी नाराजगी खत्म करते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हम उसे अना में गुजार देते हैं। कभी सोचिए, अगर आज हम किसी से नाराज हैं और कल वो शख्स हमारी जिंदगी में ना रहे तो क्या हम अपनी अना पर कायम रहना चाहेंगे, या फिर हमें अफसोस होगा कि हमने बात क्यों ना की। अना को छोड़ दो तो बात बन जाए, अना को छोड़ दो तो बात बन जाए, मोहब्बत को जोड़ लो तो बात बन जाए। जो झुक गया वही बड़ा हो गया, जो अना में रहा वो तन्हा हो गया। सामीन, आखिर में बस इतना ही कि रिश्ते अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उनकी कदर करें, उन्हें अना की नजर न करें। अगर कभी आपके सामने दो रास्ते हों, एक अना का और एक मोहब्बत का, तो हमेशा

0: तो आइए दोस्तों, बज्म का आगाज करते हैं हर्फे ताबिंदा से।
1: सामीन, आज का मौजू नहायत अहम हसास और हमारी

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सनाल मास बावजीर के संग। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम बताएंगे आपको कि नेशनल पल्स पोलियो डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कौमी यौमे पोलियो हर साल 28 जून को मनाया जाता है। इसका बुनियादी मकसद 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाना और मुल्क को इस मौजूदा बीमारी से मुकम्मल तौर पर पाक रखना है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? हाँ जी, हम आपको बताएंगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है पोलियो के खात्मे के लिए। पोलियो एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस है जो बच्चों को ताहयात मफलूज कर सकता है और इस बीमारी से बचाव का वाहिद मौसर जरिया हिफाजती खतरे यानी कि वैक्सीनेशन है। जामा मुहिम पल्स स्ट्रेटजी इस दिन के इनेकाद का मकसद एक ही वक्त में बड़ी तादाद में पल्स में बच्चों को वैक्सीन फराहम करना होता है। इस बीमारी से बचाव का वाहिद मौसर हिफाजती खतरे हैं।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल पल्स पोलियो डे की। जी हाँ, इस दिन के इनेकाद का मकसद एक ही वक्त में बड़ी तादाद पल्स में बच्चों को वैक्सीन फराहम करना होता है ताकि वायरस के मुंतकिली की जंजीर को तोड़ा जा सके, वायरस के दोबारा फैलाव को रोका जा सके। अगरचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2014 में भारत को पोलियो फ्री मुल्क करार दे दिया था, लेकिन दुनिया के देगर हिस्सों से वायरस के दोबारा खतरे के पेश नज़र बच्चों को बाकायदगी से खतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है।

हर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ लाजमी पिलाए जाते हैं, चाहे इन्हें पहले से मामूल के टीके क्यों ना लगे गए हों। आप अपने करीबी पल्स पोलियो बूथ या पब्लिक हेल्थ सेंटर पर जाकर अपने बच्चों को ये मुफ्त दवा पिला सकते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सनाल मास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत।

चंद हिंदी फिल्मी गीत और साथ ही आज हम बात करेंगे मलिकाए तरन्नुम क्वीन ऑफ मेलोडी सुर कोकिला पद्मा भूषण गुलकारा अलका याग्निक की, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुर कोकिला अलका याग्निक की। अलका याग्निक बॉलीवुड की एक लेजेंडरी और मकबूल तरीन प्लेबैक सिंगर है। चार दहाइयों पर मुहैया अपने शानदार करियर में इन्होंने हजारों गाने गाए और मुताद अवार्ड्स जीते, जिनमें सात फिल्मफेयर अवार्ड्स शामिल हैं।

FM Rainbow 101.9। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं अलका याग्निक की। जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक 20 मार्च सन 1966 को कोलकाता भारत के एक गुजराती खानदान में पैदा हुई। मौसीकी इन्हें विरसे में मिली क्योंकि इनकी वालिदा शोभा याग्निक खुद एक तरबती याफ्ता क्लासिकल ग्लोकारा थी। अगर हम इनकी इब्तदाई तालीम के हवाले से अगर बात करें तो इनकी वालिदा ने ही इन्हें मौसीकी की इब्तदाई तालीम दी। इन्होंने महज 6 साल की उम्र से ही ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए भजन गाना शुरू कर दिए थे।

जी हाँ दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं अलका याग्निक की। मौसीकी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो 10 साल की उम्र में अपनी वालिदा के हमरा बम्बई मुंतकल हो गई और इन्होंने अपना पहला गाना सन 1980 में फिल्म पायल की झनकार

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं अलका याग्निक की। जी हाँ दोस्तों, इन्हें बड़ी कामयाबी सन 1981 की फिल्म लावारिस के गाने मेरे अंगने में से इन्हें शोहरत मिली। सन 1988 की फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 ने इन्हें

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिसे मैं करती हूँ प्यार, और जिसे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

101.9 आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सनाल मास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं सुर कोकिला मलिकाए तरन्नम क्वीन ऑफ मेलोडी पद्मा भूषण गुलोकारा अलका याग्निक की। जी हाँ दोस्तों, 90 की दिहाई में इनकी आवाज कुमार सानू, उदित नारायण और सोनू निगम के साथ बेहद मकबूल हुई। इनके मशहूर तरीन गानों में गली में आ चांद निकला, ताल से ताल मिला, दिल बर और अगर तुम साथ हो शामिल हैं।

जी हाँ दोस्तों, बातें हो रही हैं पद्मा भूषण गुलकारा अलका याग्निक की। जी हाँ, अलका याग्निक की शादी सन 1979 में शिलांग के एक कारोबारी नीरज कपूर से हुई। इनकी

लेकिन हमने जरूर सोचा था। जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक को बेहतरीन पस पर्दा ग्लोकारा का 7 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और इन्होंने कई जबानों में तकरीबन 20,000 से ज़ायद गाने गाए।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमाज बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप सुन रहे हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं पद्मा भूषण गुलकारा अलका याग्निक की। जी हाँ दोस्तों, 90 की दिहाई में बॉलीवुड की दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल और रोमानवी गुलकारों की जोड़ी मानी जाती है। इनकी सुरीली और जज्बाती आवाज़ें हिंदी और उर्दू सिनेमा के गानों की पहचान बनी। अलका याग्निक और कुमार सानू के बारे में अगर हम मज़ीद बात करें तो इनकी आवाज़ का जादू, इन दोनों गुलकारों की आवाज़ें मोहब्बत, जज्बाती गहराई और रोमांस से भरपूर थीं।

जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि कुमार सानू और अलका याग्निक इन दोनों ने अनगिनत मोहब्बत भरे गीत गाए। इनके मकबूल तरीन फिल्मों के गीतों की अगर हम बात करें

जो कि इन्होंने डुएट्स गाए, आशिकी दिल है के मानता नहीं, परदेस, साजन जैसे शहरे आफाक फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ के जादू चलाए।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मल्लिकाए तरन्नुम सुर कोकिला क्वीन ऑफ मेलोडी पद्मा भूषण गुलकारा अलका याग्निक की। जी हाँ दोस्तों, नदीम श्रवण की कंपोजिंग और जतिन ललित अपने कैरियर में दोनों ने बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे मलिकाए तरन्नुम, सुर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, पद्मा भूषण गुलकारा अलका याग्निक की। जी हाँ दोस्तों, सुरीले गीतों का सफ़र होता है यहीं पर अब खत्म। आइए अब सुनते हैं पयाम शब। तहरीर और पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जेदी की।

इस शान से लौटे हैं गवा कर दिलो जान हम, इस दौड़ तो हारे हुए लश्कर नहीं आते। हकीकी कामयाबी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि इज्जत, हौसले और किरदार के साथ मुश्किलात का सामना करने का नाम है। बाज़ औक़ात इंसान बहुत कुछ खो देता है, मगर उसका विकार, सब्र और क़ुद्रत एतमादी बाकी हो तो वह हकीकत में शिकस्त खोर्दा नहीं होता। जिंदगी के इम्तिहानात से घबरा कर हिम्मत न हारें, नुकसान

0: ناکامی اور قربانیاں انسان کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، باوقار انداز میں مشکلات کا سامنا کرنے والے لوگ کبھی حقیقی معنوں میں ہارے ہوئے نہیں ہوتے۔
1: تو دوستو، اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وعدے کے ساتھ دوبارہ جلد ہوگی آپ سے ملاقات انہی میٹرز پر۔ تب تک کے لیے آپ کی ریڈیو دوست ثنا الماس باوزیر کو دیجیے اجازت۔
2: میں رتنا پانڈے۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
3: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
3: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना

चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जिनसे कई दफा हम चाहते न चाहते हुए भी शिकवा नहीं कर पाते। कुछ रिश्ते बारिश की बाद जो मिट्टी से खुशबू उठती है ना, उसकी तरह होते हैं। नजर नहीं आते मगर पूरी रूह में उतर जाते हैं।

किसी से शिकायत रहना या किसी से शिकायत करना भी दिलचस्प होता है। शिकायतें भी कह सकते हैं कि अजीब होती हैं, जिससे होती हैं उसी के लौट आने की उम्मीद भी साथ लाती है। और शायद तभी किसी ने कहा कि गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे बहुत है मगर मोहब्बत भी। वो बात अपनी जगह है और ये बात अपनी जगह।

11:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मन मीत। आपके साथ मैं विकास। रफी साहब की ये प्यारी सी मखमली सी आवाज़ और इस आवाज़ को भुला पाना शायद इस जन्म में हम में से बहुत से लोगों के लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि ये आवाज़ रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हमारे दिल को हल्की हल्की थपकी सी होती है ना, जिससे हमें उस खामोशी के पल में भी सुकून मिलता है, कुछ ऐसा ही एहसास करा जाती है। और यकीन मानिए किसी को भूलना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ कुछ इसे ऐसा कह सकते हैं कि किसी किताब से एक पन्ना फाड़ देने जैसा भी नहीं होता। ये तो पूरी किताब पढ़कर भी उसे एक सफ़े पर बार बार लौट जाने जैसा लगता है।

फिल्म का नाम रहा अनुभव, 1972 की ये फिल्म थी। और अगर आप में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को देखा हो तो आपको याद होगा कि ये फिल्म कितने सारे जज्बात लिए हुए थी। एक एक परत दर परत जैसे रिश्ते हमारी आंखों के आगे खुलते रहते हैं। फिल्म का संगीत इस कहानी को आगे बढ़ाता है। संगीत की बात करूं तो इस फिल्म में संगीत रहा कानू रॉय का। और जिन लोगों ने इस फिल्म को ना देखा हो तो जरूर इस फिल्म का नाम कहीं पर नोट कर लीजिए और यकीन मानिए आपको शायद दिल को छूने वाली ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। फिल्म का नाम है अनुभव। ग्यारह बजकर 40 मिनट होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए हैं आप। आपके साथ मैं विकास और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत।

कुछ फिल्में होती हैं ना जो अपने संगीत के साथ हमें बांध लेती हैं, और उनमें से एक फिल्म ये कही जा सकती है जिसका नाम बहू बेगम है। इसमें बहुत से ऐसे गीत हैं जो अगर आप गुनगुनाने

देखते हैं तो एक अलग सी आप में एहसास जो है वो तारी होने लग जाता है। 11:50 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ आप जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहा हूँ मैं आप तक उन प्यारे प्यारे नगमों को पहुँचाने की जो हमारे दिल के और आपके बहुत करीब हैं।

दुलारी फिल्म का ये गीत है। दुलारी आई थी 1949 में और देखिए वक्त 2026 का है, लेकिन संगीत कभी नहीं मरता। पुराने गीत अपनी खूबसूरती के चलते हमारे जहन में यूं ही बसे रहेंगे। इस वादे के साथ कि विकास आपसे फिर दोबारा कभी ना कभी जरूर मिलेगा। रखिएगा आप अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दवाओं, शल्य चिकित्सा के सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उप नियंत्रक लेखा नीरज चोपड़ा शामिल हैं। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। बेलफास्ट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे 2020 क्रिकेट मैच में बड़ा उलटफेर करते हुए 1 रन

ये जानना कि तुम जानते हो कि जानना क्या होता है। धीरे धीरे ये समझना है कि तुम्हारी उंगलियों के बीच जो खाली जगह है वो हाथ थामने के लिए है। स्वादिष्ट प्लेवेक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 12 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

वैसे आज खिड़की के बाहर मौसम कुछ ऐसा ही है, यकीन ना हो तो झांक कर देख लीजिए। अगर आप मुझे किसी खास शख्स के साथ सुन रहे हैं तो उनका हाथ थाम लीजिए, और अगर वो आपसे दूर हैं तो महसूस कीजिए उनकी मौजूदगी को, क्योंकि सफ़र वही जो साथ में तय किया जाए और मंजिल वही जो दिल तक पहुंचे। अगला गीत आप ही के लिए, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: फिर से तो फरमाना।
1: जब तैयारियां इतनी जोरों शोरों से है तो आना तो पड़ेगा ही। मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर, क्योंकि हाँ, हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। वैसे ही आंखों आंखों वाली बातचीत भी कमाल की होती है ना। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा चेहरा है जिसकी पलकों के उठने और गिरने से आपकी सुबह और शाम होती है, तो ये अगला गीत उसी के लिए, अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में आप ही के लिए।

वैसे इश्क में ऐसा ही होता है, जब मोहब्बत मुकम्मल होती है तो फिर उस इंसान के सामने सारी कायनात फीकी लगने लगती है। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जब हमें किसी से बेइंतहा मोहब्बत होती है तो वही इंसान सबसे हसीन सबसे मुकम्मल लगता है। अगर आप भी किसी की यादों से घिर आए हैं जिसके सामने चांद की रोशनी भी फीकी लगती है, तो ये अगला गीत उसी के नाम, अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 18 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप, और अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

0: आप जानते हैं मोहब्बत की आखिरी हद क्या होती है? मुझे लगता है कि आखिरी हद वो है जहां आप अपने वजूद से ज्यादा सामने वाले की जिंदगी की दुआ करने लगते हैं। कहते हैं जब हम किसी से ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी सांसें भी उनकी अमानत बन जाती है।
1: मुकेश जी का नाम आते ही बहुत सी यादें भर आती हैं। मुकेश जी के साथ मेरे बहुत प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत देर से नहीं थे, लेकिन इमोशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा थे। मुझे सिर्फ एक दुख है कि मैं उनको बहुत देर से मिला। इतने बड़े सिंगर, इतने महान कलाकार, ये बात नहीं है। उन्होंने की है, बहुत कम लोगों ने की होगी। मुकेश जैसे इंसान

हम सभी अपनी जिंदगी में न जाने कितने ख्याल देखते हैं, सोचते हैं। उनमें से कुछ ख्याल पूरे होते हैं और कुछ अधूरे ही छूट जाते हैं, है ना। ख्याल एक ऐसा परिंदा होता है जो वक्त और फासलों की बंदिशों को नहीं मानता। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी ऐसे शख्स का इंतजार जरूर करते हैं जिसे मिलने के बाद लगता है कि सफर अब मुकम्मल हो गया। कोई ना कोई एक चेहरा ऐसा ज़रूर नज़र आता है या लगता है कि हाँ, ये वही चेहरा है जो मेरी अधूरी नज़्म के लिए मुकम्मल है।

देशी गंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे सुनेंगे आप समाचार। अब से फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त

0: संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले के तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला जारी है। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish B. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as a chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, Mr. Modi addressed a joint press meet after delegation-level talks with Seychelles.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां इतिहास और स्मृतियों से संगीत हमें आवाज़ देता है। तो चलिए फिर इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं 1950 की कालजयी फिल्म के गीत से, जिसे आवाज़ दी है तलत महमूद और शमशाद बेगम ने।

पहली नजर में मोहब्बत को अगर बयां करना हो तो शायद गाना यही होगा। अभी हम सुन रहे थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में 1950 की कालजई फिल्म बाबुल से ये गीत आपने सुना। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। और अब अगला गीत रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में।

हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार और रोमांटिक फिल्मों में से एक। संगम से सुन रहे थे आप ये गीत रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में। संगीत शंकर जयकिशन साहब का और गीतकार थे हसरत जयपुरी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था राज कपूर साहब ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार ने। फिल्म संगम की कहानी तीन दोस्तों के यानी कि राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म दोस्ती, प्रेम और त्याग को बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता जी और मुकेश की आवाज़ में।

अभी आपने सुना फिल्म आस का पंछी से ये सदाबहार गीत मुकेश और लता के आवाज़ में। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1961 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहन कुमार ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने। ये फिल्म जो है वो युवा के सपनों को लेकर, उसकी जिम्मेदारियों को लेकर, उसके संघर्ष को लेकर बनाई गई थी।

और इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और बोल लिखे थे यानी कि गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। और अगर हम हसरत जयपुरी साहब की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के उन गीतकारों में से एक रहे जिन्होंने अपनी सरल और सहज भाषा से हिंदी गीतों को लोकप्रियता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म ब्लैक कैट से, संगीत है एन दत्ता का और गीतकार हैं जानिसार अख्तर साहब।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। गीत सुहाने एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें संगीत इतिहास और स्मृतियों से आवाज़ देता है। गीत अब तक पहुंच रहा है अगला फिल्म मधुमती से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

1958 में आई फिल्म मधुमति से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था सलील चौधरी का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था बिमल रॉय ने और कहानी लिखी थी ऋत्विक घटक ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने। सहायक भूमिका में नजर आए थे प्राण और जॉनी वॉकर। इस फिल्म की कहानी आनंद यानी कि दिलीप साहब के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे मधुमति यानी कि वैजयंती माला से प्यार हो जाता है और उनके संघर्ष को और चुनौती को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से और एक नए अंदाज में पेश किया गया है। और अब आप तक पहुंच रहा है अगला गीत आशा जी और मुकेश की आवाज में।

फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं, और आवाज़ थी आशा जी और मुकेश की, संगीत खयाम का, और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म 1965 में आई थी, और अभी जो गीत आपको हमने सुनवाया वो गीत पिक्चराइज किया गया था शशि कपूर और नंदा पर। और अब अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से।

मुड़ मुड़ के देखना है और फिर से जुड़ना है 2:10 पर मेरे साथ। अभी वक्त है समाचारों का, आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री

0: सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ग्रीस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज में अमेरिका के कैलिफोर्निया में राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। हाफ टाइम के बाद भी दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the 2 nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity, and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said, India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 31 सेकेंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी रात के सुरों पर बात, रात के दर्द पर बात, रात के की पीड़ा पर बात, रात के जज्बात को, रात के एहसास को कुछ गीतों और बातों से समझने की कोशिश। तो चलिए फिर इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार गीत के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

हम मिलेंगे किसी न किसी दिन किसी मोड़ पर, हम मिलेंगे किसी न किसी दिन किसी मोड़ पर, जैसे दो रेखाएं मिलती हैं कभी ना कभी। और अगर हम समांतर निकले तो मिलेंगे अनंत में।

कुछ गाने सुनकर ऐसा लगता है ना कि इश्क की जुबान या फिर मोहब्बत की जुबान कभी पुरानी नहीं होती। चेहरे बदल जाते हैं पर एहसास वही रहता है।

जब रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ एक साथ मिलती है तो मौसम और भंवरे गुनगुना ही उठते हैं, और मुझे यकीन है कि इस गाने को सुनकर आपके चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ ही गई होगी। बाहर मौसम चाहे जैसा हो, पर FM गोल्ड का मौसम मस्ताना तो है। अगला गीत अभी के लिए।

इस गाने को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे काम छोड़कर मौसम को गले लगा लिया जाए, स्टूडियो से बाहर निकलकर मौसम के साथ एंजॉय किया जाए। लेकिन फिर याद आया कि अगर मैं चली गई तो इस मौसम में आपका साथ कौन निभाएगा। तो चलिए फिर आपके दिल का, आपके जज्बात का एहसास समझते हुए अगला गीत आप ही के लिए।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है ना साया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक, वो रुला के हंस न पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ, आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42 और 10 सेकेंड। रात सुरमई महफिल का हसीन और यादगार सफर आप तय कर रहे हैं मेरे साथ। रात सुरमई, जहां हम रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात के दर्द को अपनी बातों से और गीतों से समझने की कोशिश करते हैं, बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर अगला गीत सुना जाए। अगला गीत है शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

प्यार का इजहार अगर मुस्कुराते हुए किया जाए तो शायद उसकी जबान वही होगी जो इस गीत में थी। और अब सुनते हैं हम अगला गीत।

वैसे दुनिया छोड़ने की बात गानों में ही अच्छी लगती है और गानों में ही अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि असल ज़िंदगी में तो अपनों के साथ, छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ रहना ही असल ज़िंदगी की दौलत होती है। अपनों के साथ रहना, अपने जो अपने करीबी हैं उनके साथ रहना ही असली दौलत होती है। तो ज़िंदगी का साथ ऐसे ही निभाते रहना ही असली ज़िंदगी है। अगला गीत

हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सी तमन्ना होती है, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, पर हर तमन्ना पूरी हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हमसफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द

0: ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल कई स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले की तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किए। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। ग्रुप चरण के मुकाबले खत्म होने के बाद 32 टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इस चरण में 16 मैच खेले जाने हैं। भारत के स्टार शटलर किताम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकीमोतो को हराया। 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना फाइनल में चीनी ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू लिंग यांग से होगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष अब्राहम। Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai. जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation.

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद और इंतजार में बहुत गहरा रिश्ता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि इसका परिणाम कैसा होगा, और परिणाम अच्छा होगा या बुरा इसका इंतजार भी होता है। इंतजार का अपना एक अलग नशा है, जिसमें शिकवा भी है और एक अजीब सा सुकून भी। कुछ ऐसी ही बेचैनी, कुछ ऐसी ही दीवानगी लेकर जब कोई किसी के इंतजार में पलकें बिछाए बैठा होता है तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है। आइए महसूस करते हैं इस खूबसूरत एहसास को।

कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में फिल्म दीवाना से अभी आपने गीत सुना। सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, सुना है वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और निभाने वाले अक्सर रूठ जाया करते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने वादा किया हो और वो टूट गया हो?

कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में फिल्म दिल का क्या कसूर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, कुछ नजरें ऐसी होती हैं जो बिना कोई लफ्ज कहे सीधे रूह में उतर जाती हैं, और तब जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं इस सादगी पर हम अपना दिल ना हार बैठें।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म चमत्कार से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म हीरो से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में।

हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, हंसते हुए दिल को पल में रुला देती है, सोई हुई तकदीर को पल में जगा देती है। मत

पूछो कि ये मोहब्बत क्या चीज़ है यार, अच्छे अच्छों को ये सीधे रास्ते से भटका देती है। आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म सनम से ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों कहते हैं कि प्यार में थोड़ा सा इंतजार उस प्यार की मिठास को और बढ़ा देता है। जब एक हमसफर दूसरे से कहता है कि एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, तो वो लम्हा इतिहास बन जाता है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कयामत से कयामत तक अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी शामिल हुए। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली

0: को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बन रहा 1,400 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उत्तरी और पश्चिमी भारत के बीच संपर्क को काफी आसान बनाएगा और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगा। एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई खंड की प्रगति की समीक्षा के बाद श्री फडणवीस ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बड़ोदरा मुंबई यात्रा के समय को 8 घंटे से घटाकर लगभग 4 घंटे कर देगा। महाराष्ट्र के भिवंडी के सत्र न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों को आशंका है कि इस मामले की तार कई राज्यों में फैले परीक्षा धांधली गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेज के शुरुआती मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का इस विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish B. Abraham. Prime Minister Narendra Modi participated as the chief guest at Seychelles' 50th National Day celebrations. The occasion also showcased participation of 2 Indian Navy ships and a contingent of the Indian Armed Forces, reflecting the deep bonds of friendship and maritime cooperation between the two nations. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: The two countries also exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, PM Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Later in the day, PM Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Mr. Modi reached Victoria on Saturday on a 3-day visit to the East African island nation. On the sidelines of the Seychelles visit, PM Modi met with Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ram Gulam. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They also reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Both leaders reaffirmed the significance of the India-Mauritius

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम के साथ आज मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। रात का अंधेरा थमा तो एक नई किरण मुस्कुराई है। देखो धीरे धीरे ही सही पर एक खूबसूरत सुबह आई है। मिट गए सब शिकवे गिले, सब धुंध छंट गई। जिंदगी फिर से नए हौसलों के साथ मुस्कुराई है।

येसुदास की आवाज में फिल्म हैसियत से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी पल पल पर हमारा इम्तिहान लेती है, कभी किसी मोड़ पर तो कभी किसी मोड़ पर। उसी में से हमने ये देखना होता है कि किस तरह हर एक परीक्षा में हमें सफल होना है।

कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म नसीब से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, एक चुप सो सुख, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी और ये सही भी है, क्योंकि हर बात का जवाब देने से अच्छा है कि चुप रहा जाए। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौतन की बेटी से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म मन से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि किसी खुश मिजाज व्यक्ति को कभी आप देखो तो आपके चेहरे पर भी अपने आप ही खुशी आ जाती होगी। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में वक्त फिल्म से ये गीत।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम रोग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में अलर्ट रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आगे पीछे दाएं बाएं अच्छे से देखकर चलें। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म जोकर से ये गीत।

0: करता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

KJ येसुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 युद्ध पोतों ने भी भाग लिया। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय

0: के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नज़र और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। सोशल मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। भारत के किदांबी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कैलिफोर्निया में सेमीफाइनल में जापान के योदाई ओकीमोतो को हराया। फाइनल मुकाबले में 33 वर्षीय श्रीकांत का सामना चीनी ताइपे के सू ली यांग से हो रहा है। फीफा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण के पहले मैच में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस विश्व कप में समाप्त हो गया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of Independence Day of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian PM to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkush and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Earlier, addressing a joint press conference after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, Mr. Modi said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai. जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: Prime Minister Narendra Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. He dedicated the award to the nation's fighting against the challenge of climate change and considers environmental protection their responsibility towards future generations. PM Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandra Ramgoolam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. PM Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. A sessions court in Bhiwandi has remanded the three accused arrested in Maharashtra teacher eligibility.

सुबह के 5:11:10 हुए हैं। सुबह की इस प्यारी बेला में भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आपके सब काम पूर्ण हो जाते हैं अगर उस प्रभु पर विश्वास हो। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है विक्रांत माथुर ने।

दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया है और हम कई रास्तों पर चलते हैं जहां हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ जाने से और कुछ अनजाने से।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म रंगोली से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, हम हर चीज़ को बांट कर खाते हैं और शेयर करना एक अच्छी आदत भी है। इसी तरह अगर हम अपनी खुशी भी दूसरों में बांट देंगे तो देखिएगा, आप पहले से ज़्यादा खुशहाल होंगे।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में फिल्म तकदीर से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर से।

दोस्तों, धैर्य रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर समय स्वयं देता है। अशांत मन और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन में पछतावा ही देता है।

हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म बालयोगी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन के सफर में कई तरह के लोग हमें मिलते हैं, पर कुछ लोगों से हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और फिर पिछड़ने पर उनकी यादें ही शेष रह जाती हैं। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुनीम जी से ये गीत।